जूत के इनोया के फ्यूचर के प्लस पॉइंट कक आरडीबी जूत प्लस विशेष प्रतिलाभ रसाक समगिन जूत के नाम सेट वेन बैंकिंग पार्टनर आरडीबी जूत प्लस कीनुमा ओबवेनुएनमा।